सृष्ट्यप्ययेश सुरवर्ग सुवर्ण्यमूर्ते कृष्णोडुपीश सुरसुन्दर सुप्रभातम् त्वत्पाणिमृष्ट सुरपूज्य सुदर्शनोत्थ सौन्दर्य